वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, मां बोली है मावां वर्गी, ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी, ते सज्जन दियां खुलियां बावां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी, मेरे पिंड नूं जांदे रावां वर्गी। आओ इस दी शान वधाइए, इहदे सोले रल मिल गाइए, क्योंकि बोली अपनी ते सानू माण होना चाहिदा। बंदा जदों बोले तां पछाण होना चाहिदा, अपनी पछाण वाला दीवा ना बजा दिओ, वेख्यो पंजाबी ना भला दिओ, वेख्यो।

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर।

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: हाँ जी 2825 जी भाई जी।
2: हाँ जी नवी सत्य काल जी।
1: कैसे हो?
2: है बढ़िया बढ़िया, क्या बात है?
1: की हो गया?
2: मैं क्या बदल पड़ती है पाजी ने गाना अपने क्या के गया लौंड ले।
1: हाँ पाजी ने रंग बन गए हैं।
2: हाँ रंग बन गए थे, मतलब इधरले पत्तन हो जाएगा डिपार्टमेंट से शुरू कर दियो तो बहुत बढ़िया शाम संधूरी हो जाएगी।
1: शाम वैसे आज थोड़ी सी है ठंडी, गर्म कर दी है पूरी की नहीं? शाम नू मना रहे हो?
2: मैं ना कौन नहीं काम तो आया, अपने यार्ड नू जा रहे हैं, ट्रेलर खड़ा करना ना।
1: अच्छा
2: ते जावांगे घर, फिर जाके नावा नू वांगे जिद्दां वी आ।
1: हां ते फिर
2: टीवी टीवी देख लो।
1: बस टीवी देख के सार लेना काम है। लॉन्ग वीकेंड है, तुसी बस टीवी वो ही सीरियल देख के फिर सोना। चलो मर्जी है थोड़ी, जिंदगी च थोड़े फन शन भी कर लिया करो।
2: चाहिए
1: और तुसी हुक्म करो कोई।
2: अपने मैं भी अपने कहना, चलो
1: बारह साहब का लगाना ला दो, बारह साहब का बहुत गलत गल है जो कर रहे हैं। बस हारी जाते हैं हारी जाते हैं, ते अज मुंबई नू हार गए। मेनू अज दो चार मैसेज आए कि भाजी देखो अपने बंदे ने की करता, असि भी की करिए यार। चलो मर्जी है ना जी। 2865 हां जी भाई जी
3: मुंडा ना भुल भगत भाई भगत का मुंडा
1: केड़ा
3: सिंगर जेड़ा मुंडा गीत लिखदा मुंडा
1: गीत
3: भगत
1: भाई भगत केड़ा मुंडा ना तो दसो
3: पूरी ना की ना लास्ट पूरी मुंडे का ना लास्ट नेम भगत भगत भाई का पिंड का मुंडा गीत लिखता ना
1: भगता भाई का मेनू पिंड का तो चलो पता पर जेडे बंदे की गल कर रहे हो नहीं
3: मेनू लास्ट ना पूरी है
1: पूरी
3: हां जी
1: मैं कोई गाउंदा राइटर सी गीत लिखदा सी भगत भाई का ठीक है।
3: हाँ जी मशहूर बहुत पूरा जी साडे अपने नेड़े ही।
1: अच्छा मैं उस पिंड च गया बहुत।

श्री वाहे गुरु साहेबा जी, हर जेठ जड़न दा लोड़िया, जिस अगा सब निवाना, हर सज्जन दावन लग्या, किसाना दे बाना, हर जेठ जड़न दा लोड़िया, जिस अगा सब निवाना, हर सज्जन दावन लग्या, किसान दे बाना, माणक मोती नाम प्रावा, उन लगा नाही साना, रंग सबे नारायण, जेते मान पावन, जो हर लोड़े सो करे, सोए जी कराना, जो प्रभ कीते आपने, से कहिया तन्ना, आपन लिया जे मिला, बिछड़ क्यों रवाना, साधु संग प्रापते, नानक रंग मनाना, हर जेठ नंगीला तिस तणी, जिसका भाग मथाना, साधु संग प्रापते, नानक रंग मनाना, हर जेठ नंगीला तिस तणी, जिसका भाग मथाना, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर जेठ जुड़न दा लोड़िया, जिस अगा सब निवाना, हर सज्जन दावन लग्या,

शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन ली याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नु 416 930 1251 416 930 1251

जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी

0: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स, कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com. Summit Realty Expert.
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है।

0: एक्सपर्ट?
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स. कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com. Summit Realty Expert.
2: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है.
3: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो. इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन.

तेरे रूबरू एक दिन तेरे ही किसी अजीज की सिफारिश लेकर, मेरी तो तू नहीं सुनेगा मुझे पता है, वही आएंगे मेरे साथ मेरी गुजारिश लेकर।

0: इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
1: मैं कला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी को करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर तो दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
2: इंश्योरेंस फॉर यू दी।

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट

0: सोच नहीं पंगा देख के लिया साडा झाड़ के उन्होंने वापस मोड़ दिता। जिहड़े 5-6 प्यादे मस्क मुस्क उन्हें नाल लैके गया सी, जिहड़े ड्रामे करते पे सी कि मस्क ते ट्रंप लड़ पे ने आपस च, वह नंगे होकर सामने आ गए ने कि अंदरों इको ने सारे लोग। ये व्यापारी लोग ने अमरीका लिए बहुत बढ़िया, अमरीका लिए बहुत बढ़िया, अमरीका लिए बहुत बढ़िया। प्लीज़ इस अनपढ़ता चो बाहर निकलो, वो अपने परिवार से अपने घर से अपने दोस्तों लिए बहुत वधिया। अनपढ़ता चो बाहर निकल के स्टेटमेंट दिया करो कैनेडा च बैठ के जिहड़े देंदे, वो सिर्फ बयान दिंदा हैगा। जिवें मैं देने शुरू कर देवां कि ब्रैंटन टैक्स फ्री होना चाहिए है, पर सब का मैं टुकड़ा कुटा टैक्स के विच, यह सब कुछ हो रहा। फिलहाल फ्राइडे है यार, लॉन्ग वीकेंड है। संतोष जी भी आ चुके हैं। संतोष जी सत श्री अकाल, की हाल चाल ने?
1: सत श्री अकाल अमन जी, बहुत वधिया। सत श्री अकाल सारी रेडियो लिसनर्स नू। अमन जी अज ना मैं एक सवाल लेके आई हां,
0: मैं थोड़ा सवाल पढ़ लिया जी, देख लिया मैं, पूछो जी की सवाल है, मैं जवाब दूंगा पहला, तुसी लिखा कि तुसी भी जवाब देना। हां
1: जी जी बिल्कुल। मेरा सवाल अज दा ये है कि जे तुहानू कदी भी मौका मिले किसी एक इंसान दे नाल बह के खाना खान दा, चाहे वह कोई इतिहासिक परसन हो या कोई भी होवे तुहाडी लाइफ च, तुहाडे मन च हैगी आ गल कि तुहानू मौका मिले ते तुसी किहदे नाल बह के खाना खाना पसंद करोगे?
0: सो संतोष दा क्वेश्चन है, मैं ज्यादा सिंपली जो मैंने लिखी पढ़ के पाया कि वीरे इतिहासिक बेचारी भूमें कह दिंदी है। संतोष दा मतलब है कोई भी तुसी हिस्टोरिकली कोई महान शख्सियत है। यकीन मनो जब मैं संतोष नाल गल कर रहा सी, मेरे दिमाग च पता संतोष की चल रहा सी
1: जी?
0: सच्ची कहना पया, मेरे दिमाग चलता सी सरदार भगत सिंह कि काश मैनू उन्हां दी जूठी रोटी थोड़ी जी मिल जांदी। वह भगत सिंह जिहड़ा उहदी जेल दे कमरे नू टॉयलेट नू साफ करदा सी, जोधा दा नां सीगा, माई जोधा कहिंदा हुंदा सी उहनूं, माई जोधा बंदे नू, उस बंदे नू मां कहिंदा हुंदा सी। उह कहिंदा हुंदा सी भगत सिंह मैनू मां क्यों कहिंदा हुंदा, कहिंदा जां तां मेरी गंदगी साफ कीती है मेरी मां ने या तू कीती है। उस आदमी नू जेल च इन्ना उच्चा चक दिता सी भगत सिंह ने यह कह के जाण तों पहला कि मैनू कोई दो रोटियां अपने हाथ नाल बना के खिला देगा क्योंकि तू साडी सारे दी गंदगी साफ करदा, तो गलियाण करदे सी सारे। तो भगत सिंह की इच्छा सी कि मैं दो रोटियां जोधा माई दे हाथ दियां बणियां होईयां खाणियां ने जाण तों पहला। सो मेरे मन च यह आया, मैं कह भगत सिंह की एक छोटी जी बुरकी मिल जाए जूठी मैनू, तो मैं थोड़ा चिर बैठ लवां, जस्ट मैं देखी चला तो सुना इस 24 साल के नौजवान नू, जिथे अज टिकटॉक दियां पट्टियां होईयां कुड़ियां ते टिकटॉक ते इंस्टाग्राम दे पट्टे होए बंदे जाण सकण के उधम गोबिंद गदरी बाबे खत्म नहीं होने, भगत सराबे खत्म नहीं होए, अज नहीं होए पर दिख नहीं रहे, आदर्श हो गए ने क्योंकि इन्हां दा मुल खत्म हो गया। और भगत सिंह उन्होंने 24 साल की उम्र के पूरी दुनिया जगा के रख दी सी, तो एक कई इतिहास नहीं पता। मेरा मेरी इच्छा होगी संतोष कि मैं भगत सिंह ना बैठ के खा सका, एक मेरी इच्छा और एक बंदा एक्स्ट्रा ले सकता।
1: हाँ जी हाँ जी ले लो।
0: एक बंदा एक्स्ट्रा मैं ले सकता, मेरे दादा जी सरार गाही सिंह बेनीपाल, मैं उन्होंने देख नहीं पाया सी, मेरे जन्म तो कुछ महीने पहले चले गए सी। एक मेरी इच्छा कि मैं अपने दादा जी सरार गाही सिंह उन्होंने बैठ के कुछ खा सका, मतलब जे इदा का कुछ पॉसिबिलिटीज हो। सवाल का जवाब है तुहानू सारा जवाब देना पैना संतोष का, 905-673-3337 कि अगर तुहानू संतोष कि मैं मौका मिले,
1: अगर तुहानू मौका मिले किसी भी एक इंसान नाल
0: खाओ, चाहे शाहरुख खान ना खाओ जिन्ना मर्जी खाओ सानू कोई लेन देन नहीं है ना, चाहे क्रिकेटर ना खाओ चाहे ट्रंप ना खाओ सानू कोई लेन देन नहीं, असीं कुछ नहीं कहांगे, असीं सिर्फ सुनना चाहुंदे आ कि तुहाडे मन दे विच की आ, तुहाडे मन चों खंगोल के की कढ़दे हो। वैसे इट भज लई है ते उड़ान भर रही है 905-673-3337, तुहानू मौका मिले ते तुसीं किहदे नाल खाणा पसंद करोगे बैठ के, चाहे वह जिउंदे ही ने हुण चाहे तुहाडे नाल नहीं हैगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ। ਸੰਤੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ?
1: ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ।
0: ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ?
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
0: ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ 905-673-3337 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਦੋ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ। 905-673-3337 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? 905-673-3337 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

0: ਹੀਟ ਵੇਵ ਆ ਗਈ।
1: ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ?
0: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
1: ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਨਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 च।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, एता गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, whole lot of value.
3: Last night you went out drinking and you did the right thing. You left the car at home. Thank you. But even though you slept, do you think you're okay to drive? If you drank a lot the night before, you could still be intoxicated. Only time, not a cold shower, a hot coffee, or a big meal can lower your blood alcohol concentration. Plan ahead for your night out and the next morning. You'll be helping to keep our roads safe. A message from SmartServe Ontario and Arrive Alive, Drive Sober.
4: 32, 55, 80, 98, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, Brampton TV and Appliances, 801 Bowway Drive near Chingozi. Call 905-450-2828. 905-450-2828. 905-450-2828.

मिड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। अच्छा वधिया, उम्मीद करते हैं तो अड्डा इतना दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरों ना जोड़ के रखिए। अगे चल के किरण जी थोड़े लिए वतनों दूर पेश करेंगे, मनप्रीत जी इंडिया तो खबर पेश करेंगे, सुखी निजे साहब भी हाजिरी लाएंगे। सब तो पहला छतरी शाह रिपोर्ट हाजिर है। अज कानूनी तौर से 5:52 से सूरज सिंह आया, 8:35 चले जाना मामा चाचे सवेरे सवेरे 4:37 आया, शाम 7:46 जाना, सारा दिन चक्कर कटता रहेगा। अज का तापमान 20 डिग्री तकरीबन, सारा दिन सूरज चमकेगा, इस नाइस वेदर टुडे। कल 24 डिग्री सूरज चमकेगा, संडे 24 डिग्री सूरज चमकेगा, मंडे 24 डिग्री सूरज चमकेगा, ट्यूजडे 26 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड बारिश पेगी, झखड़ झोले थंडरस्टॉर्म भी आने, बुधवार 21 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड बारिश पैण के आसार नजर आते हैं।

0: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
1: तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: मित्रां दे जंक्शन ते।
5: ओ केड़े जंक्शन ते?
6: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते।
4: रात लगिया महफलां रे।
6: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM, ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
7: कनेडा विच 75+ लोकेशंस दे नाल पिज़्ज़ा डिपू लेके आया फुल ऑन टेस्ट दा कॉम्बो। 50+ टॉपिंग्स दे नाल बनाओ अपना फेवरेट पिज़्ज़ा। ट्राई करो स्वीट चिली मैंगो पिज़्ज़ा या शाही पनीर पिज़्ज़ा।
8: जूसी अते स्पाइसी विंग्स 25 फ्लेवर्स दे विच अते इंडियन स्टाइल चिकन विंग्स भी ट्राई करो।
7: लोडेड फ्राइज नाल बटर चिकन फ्राइज, शाही पनीर फ्राइज, मतलब हर बाइट विच फुल पैसा वसूल। अपने नजदीकी स्टोर ते जाओ या pizzadepot.ca ते ऑर्डर करो।
8: ते जे तुसी बिजनेस करना है ते फ्रेंचाइजी एट pizzadepot.ca ते आज ही अप्लाई करो। पिज़्ज़ा डिपू, स्वाद विच टॉप टॉपिंग्स नॉनस्टॉप।
9: भाई साहब, जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
10: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है ते कवरेज इंक्रीज कर दी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
11: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nandaji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nandaji 647-822-9607. 647-822-9607.

0: Courteous
1: and efficient service. Call Narinder Mann, 905-789-1770.
2: दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं। इंश्योरेंस फील्ड दे विच हजारा लोकी आंदे ने ते हजारा ही जांदे ने पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर्स ही टिके रहंदे ने।
3: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट्स दे लई सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहुंदे हो तां फिर अज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू नाल संपर्क करो।
2: कॉल 416-457-3381
3: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है जिथे एडवाइजर्स ले बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है।
2: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे ले पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है।
3: हां इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विचो अज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381।

0: ट्रैफिक चक्कर लगाओ.
1: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स. बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सवेरे 10 बजे शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट. मजा लवो संडे नो पराठा प्लेट, मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट, ट्यूजडे चना भटूरा, वेंसडे लाजवाब वेज थाली, थर्सडे यमी हाका थाली, फ्राइडे मजा लवो साग मक्की की रोटी दा. ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते. डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल. कॉल एट 9057948111. सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपली इंडियन.
0: दुनिया दे किसी भी हिस्से विच उड़ान भरन तो पहला एक नाम याद रखो, कोमल ट्रैवल एंड टूर्स. डेस्टिनेशन बेडिंग करनी है, शिप क्रूज ले जाना है, या फिर किसी आइलैंड ते हॉलीडेज वास्ते बुक करना है पैकेज, ता कोमल ट्रैवल. इंडिया पंजाब ली डायरेक्ट फ्लाइट बुक करने वास्ते हुणे कॉल करो कोमल ट्रैवल वाले नु 905-248-7011 905-239-7711. कोमल ट्रैवल एंड टूर. की तुसी अपने खुद दा रेडियो

क्या बात है, फ्राइडे दी शाम है, लॉन्ग वीकेंड है, हैप्पी लॉन्ग वीकेंड। किवें हो फिर? मैं क्या ऑन सारी चक दी कम नु थोड़े जा थोड़ा मूड जिहा बना दिए। तुसी भी कहण जोगे हो कि नवी ने भी आके बस कोई ढिल नहीं वरती, चक ते फटे ते नाल ही पंजवी गियर पाती। सो हैप्पी विक्टोरिया डे, हैप्पी लॉन्ग वीकेंड, बेस्ट विशेज सारे नु। ते साडे वल्लों बहुत सारा प्यार है। 9 बजे तक असी थोड़े नाल, तुसी साडे नाल, दिल साडे नाल ला लै चुप करके है नहीं लोकां नु बोलण दे। सो आ जाओ फिर लाउने रौनक। नंबर है स्टूडियो का 905-673-3